0: तुम्हारे लिए जासूसी करने की वजह से जो मेरा नुकसान हुआ है,
1: उसकी जो रेपुटेशन रेपुटेशन भी तो उसकी
0: कम, और उसकी जो शख्सी रेपुटेशन है
1: exactly,
0: वो भी खत्म हुई है, और बल्कि उसकी जिंदगी को भी खतरा है, क्योंकि मुतहारिफ ग्रुप जो है वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है कि तुम हमारे मुल्क के खिलाफ गनमत के लिए जासूसी करते रहे। अब उसके भाई को जिस मुकदमे में फंसाया गया है वो भी बड़ा अजीब है, और ये चीज जो है यहाँ हमारे रहने वाले पाकिस्तानी सामईन जो है इस वक्त रेडियो हम वतन के, उनको भी मद्देनजर रखनी चाहिए। उसके भाई ने इसराइल की तरफ से जो हमले हुए हैं मुख्तलिफ सीरिया में, लिबनान में और इसमें गाजा में, उनके मुताबिक एक पोस्ट जो है वो शेयर की थी
1: फेसबुक पर। हाँ जी, जी जी जी।
0: अब देखिए फेसबुक पर आपने किसी की एक पोस्ट खुद शेयर की है, वो आपने लिखी नहीं है, लेकिन कहीं से लेकर आपने शेयर की है तो वो भी काबिल गिरफ्त है, और उस पर इल्जाम लगाया गया कि ये दहशतगर्दी की हमायत करते हैं लिहाजा इनको सजा दी जाए, लेकिन अदालत ने उसे किसी तरह से बरी कर दिया है जी। और अदालत का ये कहना है कि इसके अपने अल्फाज नहीं है, हर चंद के ये इन अल्फाज को आगे पहुंचाने का मुर्तकब जरूर हुआ है। यहाँ ये भी बात जहन में रखनी चाहिए कि आप अपने आप को बड़ी जुम्मन ना समझें, अगर आप किसी की ऐसी कोई पोस्ट जिसमें दहशतगर्दी की तरफ उठा हो या वगैरह वगैरह अगर आप वो शेयर करते हैं तो दरअसल वो आप उस पैगाम को आगे बढ़ाते मुर्तकब होते हैं, और इस तरह वो जुर्म के जुमरे में शुमार होता है। ये चीज जहन में रखनी चाहिए, और ऐसी वैसी पोस्ट जो है वो आगे शेयर करने से इज्तनाब करना चाहिए।
1: आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। अच्छा ये बताइए कि गैर मुल्कियों के बारे में जो मनफी रवैया डेनमार्क में है वो तो एक हकीकत है, उस पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गैर मुल्कियों ने जो डेनमार्क की इकानमी में जो हिस्सा लिया है और उसमें जो टैक्स वगैरह देते हैं उसके लिए जो है बहुत कम बात होती है, और आपने भी अपनी वेबसाइट पे एक तफसीली मजमून लिखा है जो इस मौजू पर है। उसके अलावा कोपनहेगन न्यूज़पेपर जो है उसमें भी एक आर्टिकल आया कि गैर मालिक से जो लोग यहाँ पे आते हैं वो अक्सर काम करने के लिए आते हैं, और ना वो सियासत में हिस्सा लेते हैं ना वो कल्चर में प्रॉब्लम करते हैं, वो तो बेचारे इस सोसाइटी की दौलत को बढ़ाते हैं। तो जो आपने जो आर्टिकल लिखा है उसमें भी आपने बड़ी तफसील से जो गैर मुल्कों की कंट्रीब्यूशन है इस माशरे में और डेनमार्क की मशियत में उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने जो पूरी डिटेल से बताया वो हमारे सामईन को पता होना चाहिए कि किन किन शोबों में जो है गैर मुल्कियों ने जो है वो हिस्सा लिया है और जो है टैक्स दिया है।
0: देखिए जहाँ तक गैर मुल्कियों से के मतलब दैनिश अमूमी रवैया है वो तो आप जानते हैं, आप पिछले 30-40 साल से इस पर काम कर रहे हैं
1: जी, जी।
0: के दबे लफ्जों में आपको कह देंगे कि आप तो बहुत अच्छे हैं आप काम करते हैं, लेकिन दूसरे जो हैं वो ऐसे हैं, और वो दूसरे ऐसे उन पर इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं कि आदमी को शर्म आती है कि ये क्या कह रहा है कहने वाला, और कहने वाला हमेशा डैनिश ही होता है। आपने देखा है कि इस वक्त पूरी डैनिश इंडस्ट्री जो है और डैनिश मुख्तलिफ कारोबारी अदारे जो हैं वो दुहाई दे रहे हैं कि उन्हें गैर मुल्की हुनरमंद अफराद की जरूरत है
1: जी,
0: खासतौर पर महकमा सेहत में भी आप देख लीजिए और बड़ी बड़ी सनतों में देख लीजिए और आईटी के शोबे में तो बहुत ही जरूरत है
1: जी।
0: लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है वो आए बाएं करते हुए मुख्तलिफ ममालिक के लिए मुख्तलिफ रवैया इख्तियार किए हुए
1: जी।
0: और ये आपका कहना बिल्कुल मिला है कि, और मैं भी आपसे इतफाक करता हूँ कि हमें हमेशा यहाँ गैर मुल्कियों को मुआशरे पर बोझ समझा गया है, और हमें ये भी कहा गया है कि हम डेनमार्क की मईशत को चूस रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये अभी एक सामने रिपोर्ट आई है जो डेनमार्क के अपने सरकारी महकमे आज़ादी शुमार में शाया की है, और इसमें कहा गया है कि गैर मुल्की अफराधी कुवत ने डेनमार्क की मजमू कौमी पैदावार में गैर मामूली तौर पर इजाफा किया है, और सन 2025 में यानी पिछले साल के आज़ादी शुमार अगर सामने रखे जाए तो इसमें गैर मुल्की कारकुनों ने डेनमार्क की मईशत में तकरीबन 386 अरब करोड़ का हिस्सा डाला है।
1: My God, ये तो बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है।
0: 186 अरब करोड़ का हिस्सा डाला है पिछले साल गैर मुल्कियों ने आपने टैक्स के लिहाज से, जबकि डेनमार्क में बैन अल-क़ौमी कारकुनों की तादाद जो है वो कोई तकरीबन 4,25,000 के करीब तक है।
1: जी जी हाँ।
0: और ये अदाद शुमार इस तस्वीर की नफी करते हैं कि तारकिन वतन यहाँ डेनमार्क में सिर्फ फलाही निज़ाम से पैदा उठाते हैं, क्योंकि अब इस रिपोर्ट के बाद हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स और मईशत की रफ्तार, सनतों की पैदावार और कौमी आमदन में जो गैर मुल्की कारकुनों का किरदार है उसको मतजी हैसियत के तौर पर पेश किया गया है। यानी उनके बगैर इतनी बड़ी रकम जो थी 386 अरब करोना, ये हकूमती खजाने में नहीं आ सकता था। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मैं आप ही से पूछूं,
1: जी जी जी,
0: कि क्या हम गैर मुल्की इस मईशत पर बोझ हैं या इस मईशत में न सिर्फ हिस्सादार हैं बल्कि अपने हिस्से से बढ़कर दे रहे हैं।
1: लेकिन असल में यहाँ पे फिर एक वही मैं सवाल बार बार करता हूँ और मेरा दिल करता है कि आपसे भी पूछूँ कि जब हकूमत को, सियासतदानों को, मीडिया को और एकेडमिक वर्ल्ड को इस किस्म के सबूत मिलते हैं तो इनको क्यों नहीं उजागर किया जाता? ये जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है ये क्यों नहीं कहा जाता कि गैर मुल्कियों से कि भई हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपकी अक्सरियत जो है वो इस मुल्क की मआशियत जो है उसमें हिस्सा ले रही है? ये तो मैंने आज तक किसी भी पॉलिटिशियन से नहीं सुना, ये अजीब सी बात है।
0: अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं तो मैं इस सवाल का जवाब आपकी की तरफ से दिलवाना चाहता हूँ, जो कि कमोबेश 20-25 साल हुए आपकी किताब सामने आई थी जिसमें आपने मुख्तलिफ गैर मुल्कियों के इंटरव्यू शामिल किए।
1: जी जी हैं, वो आइडेंटिटी के बारे में, दुरुस्त, जी जी बिल्कुल।
0: तो उसमें जिस तरह से लोगों ने अपने ख्याल का इजहार किया था वही सूरत हाल आज भी है। अगर सियासतदान खुलकर ये बात अपने लोगों को बताएं तो उनको खदशा है कि वो शायद वोटों की हमायत से महरूम हो जाए। और अभी आपने देखा है कि कल के जो मुजाकरात हो रहे हैं नई हुकूमत साजी में के लिए, उसमें दानिश पीपल्स पार्टी जो है वो किस तरह अपने उस 13 निकाती एजेंडे पर कायम है जिसका मकसद ही ये है कि यहाँ से गैर मुल्की को कूच करो।
1: जी हाँ, मैं वही उस पर थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन हमारे सामईन को थोड़ा सा ये बता दीजिए कि वो कौन से शोबे हैं जिसमें गैर मुल्की जो बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और जिसमें वो बहुत जो है वो उन्होंने जो है अपनी खिदमात दी हैं, ज़रा वो बता दो।
0: अगर इस रिपोर्ट को
1: सब में
0: रखा जाए कि उस वक्त सदत और मैनुफैक्चरिंग और तमीरात के शोबे जो हैं,
1: अच्छा,
0: उसमें भी ज्यादा की काम कर रहे हैं, ज़राअत और खुराक की सनत में भी हैं,
1: अच्छा,
0: सेहत और निगहदाश्त के इदारे जो हैं उनमें तो बहुत ज्यादा है, और आईटी और टेक्नोलॉजी जो है ये नई जदीद टेक्नोलॉजी है इसके शोबे में भी गैर मुल्की जो है वो मुकामी जैशों से ज्यादा काम कर रहे हैं। और इन सब को एक तरफ रखें फिर आप देखें होटलों में और सर्विस सेक्टर में जी जो गैर मुल्की काम कर रहे हैं उसका तसव्वुर तक नहीं डेनमार्क में किया जा सकता कि इस शोबे में डैनिश काम आगे बढ़कर काम करें।
1: अच्छा,
0: आप देखें कि आप सोचते हो कि होटल में चले जाएं, बड़े बड़े होटलों में 5-स्टार होटलों में चले जाएं और खासतौर पर सर्विस सेक्टर जो है मसलन ट्रांसपोर्ट में आप चले जाएं, देखें कि कितने गैर मुल्की जो हैं वो काम करते हैं। और इसके बावजूद इन शोबों में गुज़श्ता 15-20 दौरान के दौरान जो अफराजी कुवत की कमी पैदा हुई है वो अब मौजूद गैर मुल्कियों के वजूद से कुछ तो वो पूरी हुई है, लेकिन अभी उसका पूरा होना बाकी है।
1: अभी
0: उस कमी को पूरा करने के लिए डैनिश एम्बेसी की कौमी तंजीम जो है वो चीखो पुकार कर रही है, लेकिन हुकाम बाला जो है उन पर शायद पिछले वर्ष इसलिए भी के इलेक्शन के दिन से इसलिए ज्यादा पार्टियां बोली नहीं है और जो गैर मुल्की मुखालफ पार्टियां हैं 4 पार्टियां वो खुलकर बोलती रही हैं, लेकिन अब हालात कुछ और हैं, अब इन्हें इस बारे में कुछ कहना पड़ेगा।
1: जी, जी,
0: और
1: जी।
0: आप देखते हैं कि इस वक्त तकरीबन सन 2025 में गैर मुल्की कारकुनों ने जैसा कि हमने बताया अभी 386 अरब
1: बहुत बड़ा
0: पैदावार में शामिल की है। और ये रकम जो है बाशी भाई
1: जी जी
0: की मजमुई मईशत का तकरीबन 12% बनती है।
1: माय गॉड, बिल्कुल। جبکہ آبادی غیر ملکوں کی وہ 5-6% ہے جو کہ جو آپ نے بتایا.
0: اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم وفادار نہیں.
1: ہاں بالکل. اچھا اگر ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈنمارک کی جو معیشت ہے وہ ابھی بھی انحصار کرتی ہے غیر ملکیوں جو کہ لیبر فورس پہ, اور صنعتیں اور جو خدماتی شعبے ہیں جن کا ذکر کیا ہے اس میں اور بھی غیر ملکیوں کی ضرورت ہے, اور لوگوں کو بھی بلایا جائے گا یا جانا چاہیے, اور ٹیکس جو ہے اور پروڈکشن جو ہے وہ اس میں اگر غیر ملکی نہ ہو تو یہ اس کا بھٹا بیٹھ جائے. کیا اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں؟
0: بالکل, آپ نے بالکل بجا کہا اور میں آپ سے متفق ہوں, کیونکہ اس وقت معاشی عقائد جو ہیں وہ یہ چیز واضح کر رہے ہیں کہ جی ڈنمارک کی معیشت میں غیر ملکی کارکن جو ہیں وہ نہ صرف ایک بنیادی اہمیت اختیار کر چکی ہیں بلکہ ان کی مزید ضرورت بھی ہے, اور ڈنمارک کو اپنے اس ہٹ دھرمی سے پرے ہٹ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ان غیر ملکیوں کو جو یہاں پر پہلے سے موجود ہیں کیسی سہولتیں دی جائیں, ان پر مختلف جو مفروضوں کی بنیادوں پر الزام تراشی کی جاتی ہے اسے کنارہ کشی کی جائے اور نئے ہنر مندوں کے لیے دروازے کھولے جائیں.
1: ویری ٹرو. اچھا ایک میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ آرٹیکل اتنا کارآمد ہے اور اتنا بینیفیشل ہے سوسائٹی کے لیے کہ اگر آپ اس کو انگلش یا ڈینش میں ترجمہ کر کے اخباروں میں چھپوا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا.
0: بڑی نوازش. میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ون مین شو ہے یہ ہماری ویب سائٹ پر, اور اس طرح سے ہم اپنی طرف سے محنت کر کے لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے بہن بھائی جو یہاں ڈنمارک میں رہتے ہیں وہ بھی اس کو پڑھ سکیں, اور خاص طور پر بیرون ممالک جو ہیں وہ کریں. آپ کے لیے ایک چھوٹی سی خبر بتا دیتا ہوں کہ حیدرآباد انڈیا سے ایک پرچہ نکلتا ہے اردو کا, اس کا نام ہے سیاست.
1: اچھا.
0: روزنامہ سیاست.
1: جی.
0: انہوں نے پچھلے ہفتے اپنے فرائیڈے ایڈیشن میں اس مضمون کو منوان شائع کیا ہے.
1: بہت خوب.
0: اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ہندوستانی جن میں اردو پڑھنے والے بھی شامل ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور کام کرتے ہیں.
1: بالکل درست. بہت اچھا کیا آپ نے, بہت اچھا کیا. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کیونکہ ڈینش لوگوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے جو کہتے ہیں جی ہم بہت بڑا بوجھ ہیں اور ہم نے اس معاشرے کو تباہ کر دیا ہے, ان کو اگر یہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ جو جیسے آپ نے جو آرگومنٹ دیے ہیں یہ ان کی بہت. چلیے اس پہ ہم بعد میں بات کریں. اگر ہم تھوڑا سا
0: کہا, لیکن آپ کو یہ بھی تو معلوم ہے نا کہ ایک خاص ادارہ جو ہے وہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی تحریروں پر بڑی گہری نگاہ رکھتا ہے.
1: جی جی ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے تھوڑی سی بات کی تھی ڈنمارک کی, ابھی جو حکومت ابھی تک نہیں بنی, اگر ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں وہ یہ ہے کہ میتھے فریڈرکسن جو ہیں اب وہ تو ان کی بجائے وینسٹرا کے جو چیئرمین ہیں تھرولس لنڈ جو ہیں وہ اب کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے 7 پارٹیوں کو دعوت دے کے ان کے ساتھ بات بھی شروع کی ہے, اور وہ اب میتھے فیڈرسن کو یہ تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ حکومت نہ بنا سکیں اور رائٹ ونگ کی حکومت جو ہے وہ یہاں پہ بن جائے. تو انہوں نے ان کو کہا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں اور میری آپ کے لیے بہت جو ہے نیک تمنائیں ہیں. ہاں کہیں بھی کیا, بالکل
0: وہ حکومت سازی میں جس طرح سے ناکام رہی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2-3 سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے موقف سے ادھر ادھر ہونے کو بالکل تیار نہیں تھیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے, اور اس میں انہی کے وزیر خارجہ جو آج اچھا قائم مقام وزیر خارجہ ہیں یا جنہیں لطف لینے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈنگ ٹپاؤ وزیر خارجہ ہیں لاسٹ کے راس موسن,
1: جی جی بالکل,
0: ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا سخت اور جارحانہ ہے. جی, اور بعض تو یہ بھی کہہ رہے تھے اور ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے آنے والی حکومت میں کوئی بہت بڑا عہدہ چاہتے ہیں, اور عین ممکن تھا کہ ان سے یہ منسوخ کیا گیا کہ شاید وہ خود وزیر اعظم کے لیے عہدے کے لیے بھی متمنی ہیں, لیکن وہ اظہار نہیں کر رہے ہیں. یہ تو خیر وہ چلتی باتیں ہیں جو ڈینش میڈیا میں سامنے آتی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میٹے فریڈرکسن کی جو ناکامی ہے اس نے کنزرویٹو پارٹی کے رہنما کو جس طرح سے موقع مہیا کیا ہے نئی حکومت بنانے کا, اور جس طریقے سے وہ پھر وقت سے پارٹیوں کو مدعو کر رہے ہیں, ایک دو پارٹیوں کو انہوں نے بلایا بھی ہے, और उन्होंने अच्छे इम्कानात का इजहार भी किया है, लेकिन साथ ही एक मसला जो है वो ये है कि दाएं बाजू को तो वो बुला रहे हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और इम्कान भी जाहिर कर रहे हैं कि शायद अब के दाएं बाजू की हुकूमत हो, लेकिन मुजाकरात के दौरान अब तक बाएं बाजू की पार्टियों को खासतौर पर एचएफ को ये कोई खास अहमियत नहीं दी जाए।
1: जी बिल्कुल,
0: और ये बात जो है ये साबित करती है कि दानिश्ता तौर पर कोशिश यही की जा रही है कि दाएं बाजू की हुकूमत कायम हो, लेकिन दाएं बाजू की हुकूमत में अगर आप गेंच फॉल्ट पार्टी को, जो कि हम चाहते हैं वतन और खासतौर पर हम मुसलमानों के बड़ी खिलाफ है, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है तो ये एक पार्लियामानी सियासत का या पार्लियामानी सियासी कुव्वत का बनने वाली हुकूमत के लिए बहुत सख्त खतरा हो सकती है।
1: और उसके साथ है, लेकिन डेनिश पीपल पार्टी ने कहा है कि अगर हम ऐसी कोई हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि जिसमें लास लुके होगा, तो और लास लुके वो जो है डेनिश पीपल पार्टी के साथ उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता, हालांकि उन्होंने 2001 में जो हुकूमत बनी थी जिसमें उनकी पार्टी ने हुकूमत बनाई थी उसमें तो डेनिश पीपल पार्टी ने बाहर रह के बहुत ही अपना असर रसूख जो इस्तेमाल किया था, तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि डेनिश पीपल पार्टी बाहर रह के सपोर्ट तो करे लेकिन हुकूमत में शामिल ना हो, लेकिन वही अपनी जो है बातें मनवाती रहे, जैसे अभी उन्होंने 13 पॉइंट्स का जो है वो
0: बिल्कुल आपने बिल्कुल बिजाचर्जिया किया और यही बात मैं आज कर रहा था।
1: जी जी,
0: डेनिश पीपल्स पार्टी जो है अभी कल शाम की बात है, उनके रहनुमा ने ये साफ कह दिया है कि हम किसी को भी इस शर्त पर पार्लियामानी सियासी हमारत मुहैया करने को तैयार है कि हमारे इंतखाबी वादे जो थे जो कि एक 13 रुकनी मंसूर की सूरत में हमने पेश किए हुए हैं उनको तस्लीम किया जाए, और ये डेनिश पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि हमने जो अपने गैर इंतजाम से अपने अमाचियों से वादे किए थे इंतखाब के दौरान हम दूसरी पार्टियों की तरह उनसे मुनहरफ कभी नहीं होंगे, और ये कभी जो है ये बहुत सख्त है ये, और इसी तरह राष्ट्रों के राष्ट्रों का ये कहना जो था कि वो किसी ऐसी हुकूमत में शामिल नहीं होंगे जिसमें डेनिश पीपल्स पार्टी शामिल होगी, ये थोड़ा सा लचकदार रवैया भी दिखाई देता है कि चलो अगर वो शामिल नहीं है तो उससे पार्लियामानी हमायत हासिल कर ली जाए, यानी पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले कानूनी मुसवदाजात जो हैं या जो अमूर है उन पर डेनिश पीपल्स पार्टी बराह रास्त हमायत देने की बजाय ये कह दे कि ये हमारे मंशूर के खिलाफ प्रांशिक जो है उसको तस्लीम किया जाए तो हम इसको तस्लीम कर लें। अब ये चूहा बिल्ली का जो खेल चल रहा है इसका नतीजा क्या निकलता है कल सोमवार के दिन कुछ थोड़ा सा सामने आ जाएगा।
1: अच्छा।
0: आज भी सियासी पार्टी के शाही मुशीर जो हैं जिन्हें इस रुतबे पर मुतय्यन किया गया है कि वो हुकूमत साजी के लिए सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात करें, उन्होंने सियासी पार्टियों को मदों का रखा है चंद एक को जिनके साथ शाम तक मुज़ाकरात होते रहेंगे। अब देखिए कि ऊँट किस करवट बैठता है और तेल की धार देखो और तेल के मुद्दा हमें इंतजार करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इसका नतीजा क्या निकलता है, लेकिन बाज मुबसरीन ये भी कह रहे हैं कि मुमकिन है कि हुकूमत साजी के लिए मुजाकराती एक नया दौर भी शुरू हो जाए।
1: अच्छा।
0: और अगर ऐसा हुआ तो ये डैनिश जमहूरी रवायात से बिल्कुल अलग होगा।
1: तो क्या हम इसको वाइंड अप करने के साथ साथ ये कह सकते हैं कि हुकूमत तो अभी नहीं बन रही, बहुत मुश्किल पेश आ रही दोनों पार्टियों को, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को भी और वेंसरा को भी, और वो लेन देन जो है वो उसके अलावा हुकूमत नहीं बन सकती, लेकिन जो भी हुकूमत बने खास सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की या वेंसरा की, वो दोनों हुकूमतें जो है वो हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं करेंगी, ये तो बिल्कुल साफ
0: ये बिल्कुल हकीकत है। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ खास तौर पर हमारे यहाँ डेनमार्क में जो हमारे सामईन हैं रेडियो हम वतन के उनके लिए कि वो हमारे वो आवाम जिन्होंने पिछले इंतखाबात में हिस्सा लिया था रीजन के इंतखाबात में, बल्दियात के इंतखाबात में और पार्लियामानी इंतखाबात में, उनको वो जीत तो नहीं सके पार्लियामानी इंतखाबात, लेकिन उनको अपने इस हार को फतह में बदलने के लिए अपने अपने इलाके के जो लोग हैं उन पर दबाव जारी रखना चाहिए
1: और अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में भी जो है उनकी जान पहचान है उसमें भी अपनी बात को आगे बढ़ाए।
0: और बाबर का रंग चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है इससे हमारे आप पर हमारे इत्माद को नुकसान पहुंच रहा है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा नसर भाई, अभी 10-11 मिनट हैं तो अगर हम कुछ बैन अल-अक़वामी ख़बरों पर भी बात कर लें, क्योंकि डेनमार्क में तो जो कुछ हो रहा है उस पर हम बड़ी तफसील से बात करते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल ख़बरों पर भी जो है मैं अगर आपकी राय लूँगा, सबसे पहले तो ये है कि यूरोपियन यूनियन में अब इसराइल ने जो पिछले 2-2.5 साल से गाज़ा में, उसके बाद वेस्ट बैंक में, फिर उसके बाद लेबनान में और फिर ईरान के साथ जो उसने हरकतें किए, उससे अब बिल्कुल ये साफ जाहिर हुआ है, वाज़े हो गया कि यूरोपियन यूनियन के बहुत से ममालिक में इसराइल पे जो है वो इसराइल की जो ये जो हरकतें हैं उसको पसंद नहीं किया जाता। बहुत से ममालिक में तो उन पे इसराइल पे पाबंदियाँ लगाने की भी बात हो रही है, जैसे स्पेन हो गया, इटली हो गया, डेनमार्क तो खैर उसमें शामिल नहीं है। तो अभी यूरोपियन यूनियन में जो ये डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है ये बहुत बढ़ जाएगा, क्या आप समझते हैं कि इसराइल पे अगर डिप्लोमेटिक प्रेशर यूरोपियन यूनियन की तरफ जाए तो उससे कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा उसकी सियासत में?
0: देखिए, इसराइल की सियासत पर कुछ असर पड़ेगा यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका इकदाम की वजह से, ये आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि इसराइल एक ऐसा बेमुहाज फ्यूचर है जिसे ये यूरोपीय यूनियन की पाबंदियाँ और यूरोपीय यूनियन के वावेला और नारेबाजी और इसराइल यूं करे और इसराइल यूं करे ये कुछ असर नहीं रखते। जहाँ तक डेनमार्क का चालक है, आपको तो अच्छी तरह से मालूम है कि डेनमार्क के एक दैनिक शहरी जो कि इसराइली शहरीत में रहते थे, ये वो हाउसिंग मिनिस्टर थे उनके दौर में, जो यहूदी बस्तियां आबाद की गई वो आज मकबूजा इलाकों पर कायम। इसी तरह अब जो नई बस्तियां बनाई जा रही हैं, राजा का स्ट्रिप जो है वो तो इस कदर छोटा हो गया है कि वहाँ की पहली से मौजूद फलस्तीनी आबादी जो है उसके लिए कदम रखना मुश्किल होता जा रहा है। आपने बिल्कुल मुझे कहा कि यूरोपीय यूनियन ने के 5 ममालिक जो हैं उन्होंने तो खुलकर इसराइल को ये कह दिया है कि आप बंदे के पुत्र बनो वरना यूं होगा या यूं होगा। कल आपने देखा बरतानिया भर में कितना बड़ा जुलूस निकला है फलस्तीन की हमायत में।
1: जी जी जी जी।
0: और फिर आपने देखा है कि अभी जो यूरोपीय गानों का प्रोग्राम हुआ है उसमें 5 मुल्कों ने इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए उसका बायकॉट किया।
1: जी जी जी।
0: लेकिन ये तो मुल्कों की हुकूमतों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आप देखिए कि उसी मौसीकी के मुकाबले में इसराइल को शामीन की तरफ से मिलने वाले वोट जो थे उनकी मदद से वो नंबर 2 आया। जी सवाल ये है कि अगर इसराइल को इस तरह की इजाजत दी जाती है कि वो इस तरह के मुकाबलों में आदमी मुकाबलों में हिस्सा दे तो रूस ने क्या किया है? उसको क्यों नहीं सामने महज ये कहना कि वो यूक्रेन पर हमले कर रहा है इसलिए? यूक्रेन पर इतने हमले नहीं हुए, इतने लोग नहीं मारे गए, इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इसराइल के हमलों ने ईरान में किया है, लेबनान में किया है और कर रहा है, राजा ने किया। राजा तो बिल्कुल खत्म हो गया, वहां ना कोई अमारत ना कुछ।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और शाम में जो कुछ किया तो ये जो इनका मुनाफिकाना रवैया है और इसराइल की हमायत में ये कुछ भी करने को तैयार हैं। इसराइल का वजूद जो है वो ठीक है, कबूल है, रहे, लेकिन वो अपनी उन हदूद में रहे जो अक़वामे मुत्तहिदा ने मुतय्यन कर रखी है। अब हर रोज वो अभी देखिए लेबनान में उसने 6 किलोमीटर की पट्टी जो है उस पर कब्जा कर लिया है, यानी अपनी हदूद को 6 किलोमीटर वो लेबनान के अंदर ले गया।
1: जी
0: इसी तरह गाजा में जो कुछ हो रहा है आपने देखा है, वहाँ जो येलो लाइन बनाई गई है कि जहाँ पर फिलिस्तीनी दाखिल नहीं हो सकते, उसके बाद आप देखिए कि गाजा में बाकी इतना हदूदबंद रह गया है जिसमें मुकामी आबादी जो है वो रह सकती है।
1: जी लेकिन अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी यूरोपियन ममालिक खासतौर पर जर्मनी और इटली को कहा है کہ تم جو ہے اپنی اسرائیل کی جو سپورٹ ہے اس کو ختم کرو، کیونکہ جب تک یہ دو بڑے ممالک جو ہیں اٹلی جرمنی فرانس اسپین وغیرہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ جو
0: بالکل آپ نے بلا کہا، پوری نہ صرف ایمنسٹی انٹرنیشنل بلکہ دوسری بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کو راہ راست پر لانے کے لیے کیا واقعی یورپی یونین جیسا کہ آپ نے کہا کوئی ایسے مشترکہ اقدامات لیتی ہے کہ اسرائیل کم از کم سوچنے پر تو مجبور ہو جائے. ابھی تک دیکھیے روس پر جو پابندیاں ہیں، میں روس کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے سامعین جو ہیں وہ باشعور ہیں اور وہ بات کو سمجھتے ہیں، لیکن بات کا دہرایا جانا بہت ضروری ہے. روس پر تو آپ نے پابندیاں لگا دی، اس کی آپ کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے لیکن گیس آپ روس سے نہیں لے رہے،
1: اور ان کے پیسے بھی فریز کر دیے، کئی بینکوں میں پیسے جو ہیں وہ بھی فریز کر دیے ہیں،
0: وہ بھی فریز کیے ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تمام کاروباری تعلقات جو ہیں وہ بحال ہیں. اسرائیل فلسطینی پیداوار کو اسرائیلی پروڈکٹ ظاہر کر کے تمہاری منڈی میں بھیج رہا ہے.
1: ابھی تو ہم نے بات کی ہے غازہ کی، لبنان وغیرہ کی، ابھی یروشلم کے اندر جہاں پہ 40% آبادی فلسطینیوں کی ہے، ابھی جو ہے ان کے وزیر ہیں سیکیورٹی منسٹر، وہ وہاں مسجد اقصی میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے دنگا فساد کیا، اور ان کے اپنے ساتھ کافی ینگ لوگ جو ہے وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں وہ لوگ کے گئے، اور اب تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس الاقصی ماسک جو ہے اور ٹیمپل راک اس کو توڑ کے اس کی جگہ اس یہودیوں کا جو تھرڈ ٹیمپل ہے وہ بنایا جائے. اب اس کی طرف جو ہے وہ موومنٹ چل رہی ہے.
0: بالکل آپ نے بجا کہا، یہ مسئلہ تو وزیر اعظم مناخم بیگم جو تھا
1: بالکل
0: اس کے زمانے سے جاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تم جگہ بتاؤ کسی اسلامی ملک میں، سعودی عرب ہو، اردن ہو، ایجپٹ ہو، لبنان ہو، شام ہو، کسی جگہ آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو مسجد اقصی یہاں سے اٹھا کر اس میں بغیر کوئی دراڑ پڑے ہم وہاں پہنچا دیں
1: گے.
0: اس پر کوئی مسلمان نہیں بولتا. باشی صاحب یہ دیکھیے کہ ہمارے ملا اور ہمارے علماء کرام جب یورپ کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دارالکفر. اس دارالکفر میں یعنی برطانیہ میں آپ دیکھیے کہ کتنے ہزاروں لوگوں نے کل مظاہرہ کیا ہے فلسطین کے حق میں، لیکن کیا کسی اسلامی ملک میں یہ بات ہوئی ہے؟
1: نہیں. خاص طور پہ پاکستان میں تو پابندی ہے. ابھی
0: کرنے والا ہوں کہ پاکستان جو ہر وقت پاکستانی ملا جو ہے وہ ہر وقت مٹی کے تیل کے لیے تو اور چینی کے لیے تو وہ باہر نکل آتے ہیں، لیکن کسی ایک نے فلسطین کے متعلق کوئی بیان دیا ہوا ہے سوائے جماعت اسلامی کے ایک رہنما جو وہاں ہو کر آئے تھے، وہ امدادی سامان لے کر جو گئے تھے، ان کی تعریف کی جانی چاہیے.
1: نتن یاہو نے تو، جو وزیر اعظم اسرائیل کے، انہوں نے تو پاکستان پہ یہ الزام لگایا ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں اس میں ٹانگ پھنسا رہا ہے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے تو ابھی صاف کہہ دیا،
0: انہوں نے بالکل بجا کہا ہے. اور آپ کسی زوم میں نہ رہیں، پاکستانی قوم جو ہے اس کو کسی زوم میں نہ رہے کہ اس وقت جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کے سر پر دست شفقت رکھے ہوئے ہیں، اور اپنی تقریروں میں وزیر اعظم اور چیف مارشل لا جو ہیں وہ ان کا ذکر کر رہے ہیں. یہ پاکستان کو کسی زوم میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ امریکہ کے لیے ایک منٹ لگتا ہے کہ وہ ٹانگ مار دے.
1: وہاں پہ اسرائیل کی بہت بڑی پاورفل لابی ہے وہاں پہ اسرائیل کی،
0: اور ٹرمپ جیسا آدمی جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے
1: بالکل دوست کا،
0: اور اس کی اپنی مقبولیت خود امریکہ میں کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے.
1: اچھا آپ نے ٹرمپ کی بات کی ہے، جی جی سوری،
0: اس کے لیے ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ نوبل پرائز کی تجویز پیش کر رہے ہیں. سر مانی چاہیے،
1: سر وہ تو نہیں ملا اس کو، لیکن یہ ہے کہ ابھی ٹرمپ صاحب جو ہیں چائنا گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے پریزیڈنٹ شی سے ملاقات کی. سوال اب یہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں ٹرمپ صاحب سے کہ تمہیں ملا کیا وہاں پہ، چائنا نے کچھ نہیں تمہیں دیا بلکہ تمہیں اچھی خوبصورت ویلکم کیا، یادگار جگہیں دکھا دیں، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا. حالانکہ ٹرمپ صاحب اپنے ساتھ 17 billion کمپنی جو ہیں ان کے سی او کو لے کے ساتھ گئے تھے بڑے بڑے تاجروں, لیکن کوئی معاہدہ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا نے ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ ٹھینگا دکھا دیا ایک اچھے طریقے سے.
0: آپ نے بالکل بلا کہا. دوسری طرف جو توقع کی جا رہی تھی کہ تائیوان کا اور ایران کا معاملہ جو ہے وہ بھی زیر بحث آئے گا, دو ٹوک دیکھیے یہ ہوتی ہے قوموں کی ضرورت. چائنا نے دو ٹوک ٹرمپ کو کہا ہے کہ تائیوان کے معاملے سے اپنے آپ کو دور رکھو اور یہ اور اس کو اسلحہ مہیا کرنا جو ہے وہ بند کرو. اور اپنے پورے دورے کے دوران اور اس کے بعد امریکہ جا کر بھی ٹرمپ صاحب نے تائیوان پر کسی قسم کے کوئی بیان نہیں دیا, بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا وہ کوئی نہیں جانتا فائل لے رہے.
1: اچھا,
0: یعنی میں ہی جو چاہوں گا کروں گا اور کیا کروں گا یہ وہ بتانے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہے. صرف ایران کے معاملے میں اب دیکھیے پاکستان بڑا خوش ہے اور خوشی کی وجہ بھی ہے کہ اس نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے جگہ مہیا کی, اپنے ہاں ان کو مدعو کیا,
1: کوشش کی انہوں نے,
0: کوشش کی. لیکن ایران جو ہے وہ اب اس بات کو پکا کرنے کے لیے وہ چائنا کی ضمانت چاہتا ہے.
1: ہاں جی,
0: اسے پاکستان پر اس معاملے میں بالکل کوئی یقین نہیں ہے.
1: تو پاکستان تو اس حیثیت میں ہے بھی نہیں کہ وہ امریکہ
0: بالکل نہیں کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی معاہدے کے ممکنہ مارج وجود میں آنے پر کوئی ضمانت مہیا کر سکے.
1: کل ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں, لیکن ٹرمپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم جنگ کے لیے بھی بالکل تیار بیٹھے ہیں.
0: تو بالکل وہ تو درست ہے, وہ بالکل بات درست ہے. وہی تو ایک قوت ہے جو امریکہ سے ٹکر دی ہوئی ہے جس نے, اور کچھ بھی ہے اس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ قوموں کی سالمیت, قوموں کی جو اپنی انا ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے.
1: بالکل درست, بالکل درست. نصر بھائی آپ کے قیمتی خیالات کا بہت بہت شکریہ, ہمیشہ کی طرح ہمارے
0: موقع دیا.
1: نہیں جی بالکل, آپ کے بغیر یہ ہمارا پروگرام کب چل سکتے. جی جی بالکل,
0: ہو سکے تو آ جائیے. میری طرف سے آپ کے سامعین کو ناظرین کو بہت سلام ہو اور دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے خدا محفوظ رکھے جو دور بیٹھے یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ دارالکفر ہیں.
1: نہیں نہیں یہ تو بیوقوفی والی بات ہے. اچھا اب میں پروگرام کے بعد جو ہے ہم بابا جی کے لیے فاتح کے لیے ان جائیں گے برنبی, وہاں پہ قبرستان میں بابا جی کی قبر پہ جو ہے اپنی عقیدت پیش کریں گے, تو آپ کی طرف سے بھی جو ہے آپ ان کو سلام کہہ دیں گے.
0: بالکل, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کی قبر کو کشادہ کرے اور اپنے نور سے منور رکھے.
1: بہت بہت خوب رضا بھائی, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. ہمیں امید ہے کہ ہمارے سامعین اور ناظرین کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اور میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی موضوع ہو, کوئی سوال ہو جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں, یا کسی موضوع پہ ہم آپ کے سامنے معلومات لانا چاہتے ہیں, تو آپ بالکل گریز نہ کریں. آپ ہم ریڈیو پہ ای میل کر کے, ٹیلی فون کر کے آپ ہمیں اپنی رائے سے جو ہے وہ مستفید کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے میں رضا بھائی کے پاس چلتا ہوں. رضا بھائی ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, ڈنمارک پائندہ باد.
2: آپ اور ہم وطن ایک سنگ, نئے رنگ نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84, ای میل ریڈیو سنائپلائی.